0: along to your song.
1: Only on City FM 89. It's 8 a.m.
2: City FM 89. This show is brought to you by Dettol. This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: Trending today.
5: Netflix's popular show Emily in Paris is coming to an end. The streamer announced that the show will conclude with its sixth season, which is currently shooting in Greece.
6: City FM 89.
7: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
8: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम.
9: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
10: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance, aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahein full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sab ki superpower.

0: पाकिस्तान
1: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से जैसे बिल्कुल नया
3: ना किदार ना इंतजार अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें अपना टिकट बुक करें अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ कभी भी कहीं भी ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका
4: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो
5: नई स्कीम
6: कमिटी
7: लाड बराए फरो
6: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो
8: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ
6: आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
8: शराइत ज़वाबित लागू है
9: सिटी एफएम 89
10: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
11: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Dettol.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
5: Ek duni do do duni chaar. Sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
6: अगर आप हैं इन ड्राइव कार पाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
7: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
8: पूरा हफ्ता राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ, अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8GB डेटा, 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में। बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ, आपकी मेरी हम सब की सुपर पावर। शरायतो जवाबित लागू हैं।
9: तुम कभी ना झुकी मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
10: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
11: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.

0: पाकिस्तान।
1: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
2: ना किदार ना इंतजार, अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ। एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें, अपना टिकट बुक करें, अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ, कभी भी कहीं भी। ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका।

0: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो।
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: लाड बराए फरो।
3: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
5: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: शरायत ज़वाबित लागू हैं।
7: We're playing your song.
8: Follow the 20-20-20 rule. Every 20 minutes, look 20 feet away for 20 seconds to refresh your eyes.
9: Brought to you by Dettol.
10: City FM 89.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Dettol.
3: City FM 89.
1: On the dial.
2: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
6: ek duni do do duni char sahi intikhab ke inaamat 2500
7: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और पाएं फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात
8: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन टीएनसीज को तस्लीम करना है

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Dettol.
4: City FM 89.
2: We're playing your song.
3: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Trending today.
7: Netflix's popular show Emily in Paris is coming to an end. The streamer announced that the show will conclude with its sixth season, which is currently shooting in Greece.
4: City FM 89.
8: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
9: ek duni do duni char sahi intikhab ke inaamat 2500
10: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
11: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
12: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
5: You're listening to City FM 89.
6: This show is brought to you by Dettol.
5: City FM 89.
2: We're playing your song.
6: This show is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
7: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
8: Ek duni do do duni chaar. Sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
9: Agar aap hai in drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare. Aur pay fair earnings ke saath 2500 se zyada inamat.
8: Ek duni do do duni chaar.
10: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन टीएनसीज को तस्लीम करना है.

0: पाकिस्तान।
1: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
2: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
3: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
4: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
5: Kashi jameshiri sapte
6: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se jaise bilkul naya.

0: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
1: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास
0: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: हाथ है उठाना, तो डेटॉल कूल से नहाना।
2: लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, कर्षी जामी शीरी।
3: गुलाब और संदल के खालिस अरकियात,
2: ये नेचुरल है,
4: ये तो बेहतर है।
2: लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, कर्षी जामी शीरी।
5: सिटी
6: 89।
7: अटेंशन Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
8: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
9: City FM 89 is now live on WhatsApp.
10: It's so easy.
11: 0314-289-8989.
10: Save, text, voice note or call to get your song played.
11: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
12: City FM 89. We're playing your song.
13: No talk.
14: No talk.
15: No talk.
14: No talk.
15: No talk.
13: Just you
15: and the music.
13: And the music.
15: Back to back starts now.

0: This time check was brought to you by Easy Paisa.
1: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
2: You're listening to City FM 89.
3: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना। शराय तो जवाबित लागू है।
2: Follow us at CityFM89 on Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, on SoundCloud.
3: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
4: नई स्कीम,
5: कमिटी,
3: लाड बनाए फरो,
5: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
6: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शराइत ज़वाबित लागू है।
7: Have you saved our WhatsApp number yet?
8: 03142-898989.
7: Get in touch over WhatsApp.
1: City FM 89, we're playing your song.
9: You're listening to
10: Non-Stop Hits.
11: No talk. Just you
12: and the music.
11: Back to back
12: starts now.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना। शराय तो जवाबित लागू है।
3: सिटी एफएम 89।
4: ईद उल अज़हा पर सफाई की रिवायत, महफूज हवाई सफर की जमानत, तवज्जो फरमाएं। एयरपोर्ट्स के अतराफ कुर्बानी की बाकियात खुले आसमान तले न छोड़ें। ये बाकियात एयरपोर्ट्स के गिर्द परिंदों की तादाद में इजाफे का बायस बनती हैं और जहाजों से परिंदे टकराने के वाकयात में इजाफा हो जाता है, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। एयरपोर्ट्स के गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें। आए जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाएं, थोड़ी सी एहतियात से फजाई सफर को महफूज बनाएं। डायरेक्टर जनरल Pakistan Airports Authority.
5: We're playing your song.
6: Attention. The standard commute has been decommissioned.
7: Introducing a system override for your ears.
8: New energy. New perspective.
9: The same 24 hours, but a completely different vibe.
10: Join ABD as he takes over the streets.
11: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
12: your evenings just got an upgrade.
10: The Rush Hour with ABD.
13: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
14: Tune in or get left behind.
3: City FM 89, we're playing your song.
15: Everybody go.
1: You're listening to
16: Non-Stop Hits.

0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: Hey, duni do duni cha sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
3: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
4: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
5: We're playing your song.
6: In intense heat, citizens are advised to take special precautionary measures between 11 a.m. and 4 p.m. Avoid going outdoors unnecessarily. Wear light clothing. Keep your head covered. Avoid strenuous physical activity in direct sunlight. And take special care of children, the elderly, and sick individuals. Drink plenty of water and stay safe. This public awareness message is presented in collaboration with Government of Sindh, PDMA, Commissioner Karachi, K Electric, and Selani Welfare Trust.
7: You're listening to City FM 89.
8: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
9: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
10: A new era begins.
11: We are
12: City FM 89.
0: You're listening to
13: Non-Stop Hits.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: सिटी एफएम 89।
1: When I grow up, I want to be strong.
4: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
1: I want to learn big things.
4: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how

0: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।

0: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
1: शराय तो जवाबित लागू है।
2: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
3: आए एहत करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.

0: Pakistan.
1: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: Aaye ehd kare ki hum sirf Islamic banking ka intekhab karenge kyunki dil ke itminan ke saath Islamic banking hai sab ke liye.
3: Tum kabhi na jhuki magar is wazan ke aage tumhare jism ne hi tumhe thakaya. तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है. हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया.
4: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है. इसमें आपकी कोई गलती नहीं.
5: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
6: पूरा हफ्ता राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ. अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा, 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में. बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ. आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर. शरायतो जवाबित लागू है.
7: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
2: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात. क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
8: ना किदार ना इंतजार, अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ. एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें, अपना टिकट बुक करें, अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ कभी भी कहीं भी. ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका.
2: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
9: क्लाइमेट चेंज आज पूरी दुनिया के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुका है. शदीद गर्मी, बेवक्त बारिशें, सैलाब, खुश्कसाली और फजाई आलूदगी इंसानी जिंदगी और माहौल को मुतासिर कर रहे हैं. पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा इन मौसमी तब्दीलियों के असरात को शिद्दत से महसूस कर रहा है. लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद सूबे में बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम जैसे मंसूबों के जरिए जंगलात में इजाफा किया गया जो माहौल के तहफ्फुज और कार्बन के इखराज को कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं. साफ तवानाई, सोलराइजेशन और माहौल दोस्त इकदामात एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद हैं. आएं ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, पानी और बिजली का ज़िया कम करें और अपने माहौल को साफ रखें क्योंकि आज का एक मुस्बत कदम कल आने वाली नस्लों के लिए महफूज और सरसब्ज मुस्तकबिल की जमानत बन सकता है.
10: ये पैगाम महकमा इत्तला'आत व ताल्लुकात आमा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पेश किया गया.
2: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
11: City FM 89.
12: You're listening to
13: The Rush Hour with ABD.
14: Welcome back to The Rush Hour. Okay, I'm going to tell you a story, but before that, I just want to quickly throw out there. Islamabad Rocks is bringing you a Bazam night. It's an evening filled with music, culture, energy, vibes. And if you don't want to miss out, please, on the 6th of June, it is on a Saturday night, buy your tickets from the Rocks app today. It is going to be happening at the PNCA Islamabad again on the 6th of June, Saturday night. Early bird tickets are live now, so make sure you download the Rocks app and go today and buy your tickets before they run out. Okay, so my story time this weekend was the one run. It was on Saturday morning. I woke up at like 4:15. I had a bit of a late night, so I was like, I don't know how recovery will be. But I woke up. This is my first run, mind you, in like a year and a half because of my injury that I have been trying to recover from. So I went. It was absolutely amazing. I crushed a 10K. I know that doesn't sound maybe like a lot to you guys, but since my half marathon, I've not been able to do more than 2K without pain. So a lot of physio, a lot of chiropractors, a lot of everything, a lot of strength training went in these 1.5 years. And I was finally able to do the 10K. So please message me, W Abdullah, on WhatsApp 031-428-9889. And if you also ran in the one run, physically or also virtually, I know a lot of people in Islamabad did it virtually, WhatsApp in and I will give you a shout out that we ran together. Enjoy the next few songs and we come back. Speaking of injuries, I have a lot of FIFA World Cup talk for you.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Dettol.
5: City FM 89.
6: You got me going crazy.
3: This show is brought to you by Jazz.
7: City FM 89.
8: Trending today.
9: Netflix's popular show Emily in Paris is coming to an end. The streamer announced that the show will conclude with its sixth season, which is currently shooting in Greece.
8: You're listening to City FM 89.
10: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
11: शराय तो जवाबित लागू है।
12: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
13: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
10: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
14: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
15: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance, aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sab ki superpower.

0: to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
5: City FM 89. This show is brought to you by Dettol.
6: City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
7: You're listening to City FM 89.
8: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैज कैश है ना।
9: शराय तो जवाबित लागू है।
10: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
11: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
8: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
12: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
13: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance. Aur ab, Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahein full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sab ki superpower.

0: सिस्टम। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: your song. Only on City FM 89.
1: This show is brought to you by Dettol.
2: City FM 89, your drive-along companion.
1: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैज कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।

0: पाकिस्तान
1: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसी नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए
3: गुलाब और संदल के खालिस अरकियात
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: Mustanad Ulmae Karam aur State Bank of Pakistan ki zere nigrani, Pakistan bhar mein Islamic banking ka vasee network puri kare aapki banking ki tamam zaruriyat. Kyunki dil ke itminan ke saath Islamic banking hai sab ke liye.
5: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से जैसे बिल्कुल नया ड्यूलक्स,
2: ड्यूलक्स, ड्यूलक्स। आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Dettol.
1: City FM 89.
5: Your drive-along companion.
3: This show is brought to you by Jazz.
6: You're listening to City FM 89.
7: Trending today.
8: Netflix's popular show Emily in Paris is coming to an end. The streamer announced that the show will conclude with its sixth season, which is currently shooting in Greece.
9: FM 89.
10: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैज कैश है ना।
11: शराय तो जवाबित लागू है।
12: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
13: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
10: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
14: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
15: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी। सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप, 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS, और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री। तो अभी डायल करो *4066# और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में। जैज, मेरी सुपर पावर। ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है।

0: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
1: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए
2: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
1: Aaye ehd kare ki hum sirf Islamic banking ka intekhab karenge kyunki dil ke itminan ke saath Islamic banking hai sab ke liye.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Dettol.
3: City FM 89. We're playing your song.
2: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैज कैश है ना।
6: शराय तो जवाबित लागू है।
7: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: इंट्रोड्यूसिंग द ऑल न्यू नथिंग फोन 4A और 4A प्रो, स्लीक डिजाइन, अल्ट्रा स्मूथ परफॉर्मेंस और अब जैज के साथ 5G रेडी। अब अवेलेबल है जैज एक्सपीरियंस सेंटर्स पर अफोर्डेबल प्राइस के साथ। चाहे फुल पेमेंट करें या इजी पोस्ट पे बाय जैज इंस्टॉलमेंट प्लान चूज करें, डिसीजन आपका। जैज, आपकी, मेरी, हम सबकी सुपर पावर।
9: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
10: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
5: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
11: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत, टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।

0: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
1: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए
2: गुलाब और संदल के खालिस अरकियात
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
1: Mustanad Ulama-e-Karam aur State Bank of Pakistan ki zair-e-nigrani, Pakistan bhar mein Islamic banking ka waseeh network puri kare aapki banking ki tamam zaruriyat. Kyunki dil ke itminan ke saath, Islamic banking hai sab ke liye.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 p.m.
2: This time check was brought to you by Easy Paisa.
3: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
4: City FM 89.
5: This show is brought to you by Dettol.
6: You're listening to City FM 89.
7: We're playing your song.
5: This show is brought to you by Jazz.
7: City FM 89.
8: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैज कैश है ना।
9: शराय तो जवाबित लागू है।
10: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
11: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Dettol. City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैज कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
8: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
9: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance, aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sabki superpower.
7: Mustanad Ulmai Karam aur State Bank of Pakistan ki zere nigrani. पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: आसान।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराइत ज़वाबित लागू है।
3: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: Our TikTok will have you scrolling for days.
6: Follow us at City FM89 on TikTok.
5: We are
7: City FM89.
5: Future sounds.
8: New tunes, hot beats. Where your next favorite track finds you.

0: to your road rage.
1: City FM 89.
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।

0: to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 PM.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
5: You're listening to City FM 89.
6: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
7: शराय तो जवाबित लागू है।

0: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# हैश और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में जैज मेरी सुपर पावर ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है
1: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास
2: कशी जामे शीरी सब पीते
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: Can I grow up?

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
5: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
6: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance. And now, Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahein full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sab ki superpower.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।
3: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
4: A new era begins.
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।
5: City FM 89
6: On the dial. You're listening to
7: Future Sounds.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
5: City FM 89.
6: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
7: शराय तो जवाबित लागू है।
5: You are listening to City FM 89.
8: We are playing your song.
1: You're listening to
9: Future Sounds.
10: Future Sounds.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 p.m.
4: This time check was brought to you by Easy Paisa.
5: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
6: City FM 89.
7: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
8: शराइत ज़वाबित लागू हैं।
9: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
3: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
4: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
6: City FM 89.
7: Sounds different.
8: You're listening to
9: Non-Stop Hits.
10: No matter what, you got